0: موديها كم ميجا هرتز تبقى هي فعلا.
1: ए मावे सुट्टा लाफिंग
2: आहार में सुट्टा लाफिंग
3: ए लिस्ट को मावे सीमा ना ला
4: अमिल्ला फैसा आंदा गें अमिल्ला हाशिंगड़ा गेल्लुं दिरुमा की किहा मोय कमे ए में मावे सुट्टा लाफिंग
5: दुम फाई आहार में गे हाथोरे दुम फतु गे इस्तेमाल कुरुम गे साबुं दिमावा सिही मसल तो गा आहार को हैम मिलियन वुरे किना मी हुं मारुआ कमा ताफास हिसाब तकुं दक्का फस नुजे ही अवह दुम्फतु के इस्तियो माल कुरूं हुट्टा लमा हिंगा।
6: दिवे ही एफएम, नुवधिये एके मेगाहर्ट्स।
7: मी अहमद आमिर।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

Es un terengue jobo. मैं तो कहूँ तेरे को उन शो से निम्मा लावा को तुम्हें जो उम्मीद में करें इस शो के तेरे गेनेस तो उन लावा ते हूँ तेरे ना काम दे कम वारं उफावेर वारा बाज़ जरवा कुत कोला के दम वाकेला अस्सलामुअलैकुम.

0: किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें।

0: मी मरियम रिफ्का रशीद रिफ्का गैड दिवे ही एफएम दिवे ही नाइक दिवे ही नाइक
1: नो दिहे एके मेगाहर्ट्ज़ दिवे ही एफएम

0: රීති අබදුවස් රීති
1: එම කමුදාෆිය මෙගෙන කිහවර්කතු අහැෆිනම ජවාපකි වඩ රඟලගෙන්ටේය
2: කියන කුන්දිරි උලේනි කලා යනුල මිහිතුගාවිින්දු කෙදේ නිශානන්න
1: එම කමුදාෆිල්මුගේ එම හාසකමකි කොබෑතුව හැෆිනම ජවාපකි ෆිල්ම්ගේ හූරි හාකමවෙස්
3: चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू
1: एम ए कमदा फिल्म के मेंबर बनाला टेस्ट का तैयार तो है फिनम को बा जवाब की
4: हे वल्ला तैयार
5: देहा सर्विस वनाहर दिवे ही फिल्म गेम से
6: मूवी मूड
1: एम ए कमदा फिल्म के मेंबर बनाला मा दिवे ही फिल्म के टीम मिजूरी तैयार तेबे फ्रंट तैयार तो
6: मूवी मूड

जब खुदा किसी को बनाता है ना तो उसमें कुछ खास बात होती है, लेकिन खुदा ने अदा को बनाया इसीलिए वो खास बात खुदा में।

0: आजकल का प्यार कंफ्यूजिंग है. इट्स लाइक अ चीज चाइनीज शेजवान मसाला डोसा. साला चेन्नई से चाइना सब कवर कर लिया लेकिन रहा कहीं का नहीं.
1: किसी के साथ तो मतलब प्यार तो वो होगा राइट.
0: पता कैसे चले? ये हार्ट बीट फास्ट हो जाना, नींद नहीं आना, भूख ना लगना, ये कैसे पता कि वो प्यार है कि गैस हो गई है?

0: टू फुल पिंक लाइंस लिखा हुआ है।
1: तुम एक एक, एक, एक और ट्राई कर लो।
2: तुम ट्राई कर लो ना, मेरा ब्लैडर खाली हो चुका है। इस बार भी नहीं रोकोगे मुझे?
3: अब क्या रोकने का फायदा, ना वो उम्र रही ना वो शहर रहा।
2: उम्र तो बस एक गिनती है परिमल।
4: तुम्हारा भी तो मन करता होगा ना ये सब इंटू मिंटू करने का।
5: जी
4: देखो, तुम करोगे तो मैं भी करूँगी।
5: मैं करूँगा, तुम भी करोगी, पर मैंने किया तो नहीं है ना।
2: एटलीस्ट लुक एट मी ना व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू।
6: इंसान का इवोल्यूशन हो चुका है, कान से सुनते हैं आंख से नहीं।
7: किसी के साथ पूरी जिंदगी गुजारने के लिए बार बार प्यार में पड़ना पड़ता है उसी एक इंसान के साथ।
2: You are a commitment phobic man child. डरते हो, फट्टू हो।
8: अनुराग बासु के फिल्म तो म्यूजिक की अबध स्वर मुहिम दौर अदा खुराई चक वैर मी फिल्म के म्यूजिक तैयार को दीपवाणी मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम लवतव गेलिंत संदीप श्रीवास्तव अनुराग शर्मा नीलेश मिश्रा मयूर पूरी अदि अमिताभ बचरिया लियफ वायर गायफ द मशहूर शायरोंगे लेंतव सिमनाफवे फिल्म के साउंड ट्रैक दिबेक बहाले निरीफवायर एगे तेरेगे हिमने जमाना लगे दिल का किया अदि और मोहब्बत कितनी खरू फद लवत की फिल्म के जज्बात का वर बुड़ कुले बेलुन तेरेंगे हितका कुलेली लवतके शोगे मिहासाबु मिगेनेस्तेनी फिल्म के हिमनाफवा जमाना लगे मिलावा।

0: دي هي اف ام نوديها كم ميجا هرتز.
1: Guess the dialogue. मेरे से बात कर.
2: क्या बात करूं मैं तेरे से?
1: क्या हुआ उसके?
2: अरे कुछ नहीं हुआ मेरी माँ.
1: तू कैसा है रे?
2: अरे तू कैसी है रे सफीना? तू मेरे को क्या बोली? तू दोबारा ये अल्टर पंती नहीं करेगी? फिर क्या जाके की तू? तू अंदर जाते जाते बच्चे कुछ समझ में आ रहा है तेरे को?
1: तू मेरा छोड़ तू अपना बोल.
2: क्या है मेरा क्या है कि मैं थक गया हूँ और मेरे से ये अभी नहीं होता है.
1: क्या क्या बोला तू? क्या नहीं होता तेरे से?
2: ये
1: अरे ये क्या?
2: ये अपना जो भी है.
3: मी कौन फिल्म में कही मैंने डायलॉग है? मी सवाल का जवाब फणवाणी पी एस ए में आमे दोरे को बाला ना साड़ी शोया जवाब फणो मुगे सुंगड़िया की अंगार दो होगे मेंदम पार गड़ सु मिनट कौम में हफ्ता एक वस्कूरी एक गेंदा बालालन साड़ी मिशो का गेनेस ते केस्त डायलोग गे एम में गिन सवाल तो के जवाब रंगल कुरा बैवरे का महा को इफारो नगा गुरतुं खास हादिया एली बेने एम में गिन सवाल के जवाब रंगल कुरा बैवरे नगानी कौम में महे गिवस एम में फाहुशो का
1: केस्त डायलोग.

0: Det var HF5, nu er det her ikke megahertz.
1: Mi haftage mi filmi datru mi ha hisabu nim malang. Ummid kura mi haftage shoga mi himanali film ta ki ti e hun terim balaluma. Shaugere kan ufedi gendia film ta ka vanikama. Nimmam ge kurin guest dialogue suala rangalu jawab fono ma handa kolladin. Jawab ta fono wani PSM e a medur ko balalan sali showa. Kome maha kwes emme gina jawab rangalu kura farato ge meduga naga guru atun hove. Nasiperi farataka aghuri namen e badu kollang.
2: Guest the dialogue.
3: मेरे से बात कर.
4: क्या बात करूं मैं तेरे से?
3: क्या हुआ उसके
4: अरे
3: साथ?
4: कुछ नहीं हुआ मेरी माँ.
3: तू कैसा है रे?
4: अरे तू कैसी है रे सफीना? तू मेरे को क्या बोली? तू दोबारा ये अल्टर बंदी नहीं करेगी? फिर क्या जाके की तू? तू अंदर जाते जाते बचिए कुछ समझ में आ रहा है तेरे को?
3: तू मेरा छोड़. तू मेरा छोड़. तू अपना बोल.
4: क्या है मेरा? क्या है कि मैं थक गया हूँ और मेरे से ये अभी नहीं होता है.
3: क्या क्या बोला तू? क्या नहीं होता तेरे से?
4: ये
3: अरे ये क्या?
4: ये अपना जो भी है.
5: मी कौन फिल्म में गई मेरे डायलॉग है? मी सवाल का जवाब फणवाणी पीएसएम में आमे दोर को बालान साड़ी शोया जवाब फणोम के सुंगड़िया की अंगार दोग में दम बार गड़ सुमिने कॉम हफ्ता को स्कूरी एक गेंदा बालालन साली मिशोग गेनेस्ते केस्त डायलॉग गे एम में गिन सवालतो के जवाब रंगल कुरा बैवेरे का महा को इफार नगा गुरो तुम खास हादिया एली बेने एम में गिन सवाल के जवाब रंगल कुरा बैवेरे नगाणी कॉम में महे गिवस एम में फहुशोग
2: केस्त डायलॉग
1: ಗೆ ಶೋಗವಿಸ್ ಹಂದಾನು ನುಫಿಲಾಫದ ರೀತಿ ಹಿಗ್ಗ್ಯಾ ಮದಿ ಬಲಾಲನ್ ಸಳಿ ಇತುರು ಫಿಲ್ಮ್ ತೋಗೆ ಮೌಲು ಮಾತ್ಕಿನಿ ಸಿನುಮ ಮಿವಗುತ ತಿಯೇ ಹುಂತೆ ನ ವಕಿ ವೆಲಾನ ಎಮ್ಮೆ ಹುಂತೆ ನ ಬಾಜವಿರಿ ವಗುತ್ ಕೊಳಕಂಗೆದೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ.